अंतलये छड़ाया। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई, तुम करता करना मैं नाही, जहां करी ना होई।

तेनु सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तुम आपे करता तेरा किया, सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरडै भईले निवासा, पाणी पावक तिन्ह किया।

पादशाही दसवीं कव्यो बाज बेंती चौपाई अमरी करो हाद रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना दान करो व्रत पारा अमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाद मोहे बचाबो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करदै करै सब बैरन को आस संग रहै

पाऊं। सेवक सिख मारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उबर है, मरण काल का त्रास निवर है। उज्जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजू करे हो रक्षा। राख लियो मैं राखण हारे, साहिब संसहाय प्यारे। दीन

मनाऊं किशन बिशन कबू न त्याओ, कान सुने पहचान न तिन सौल बिलागी मोरी बग इंसाओ। महाकार रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो, अपना जान करो रखवार बांग गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय।

तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मजे निवाजाब करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जानकर कृपा कर मोहे हार परामयान द्वार तोहे। अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दा जानद हाथ उबारो हमरे सबैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना किशन जथा म चरित्र उचारो छू कोय कबलिहो सुधारो कबिबाज दोहरा। जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को त्याए हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है बिबिचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा। जब आयस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए कब बाज दोहरा। ठाट भयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं

दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे बिशन भगत की ए फल होई याद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस बचावन हाड़ बधि प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लौलिहो सुधारा दोहरा।

अनंत सनोबट भागी हाओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया भरपूरे

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डुठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निदया वै ताए। सब थाई मुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब थाई मुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंदर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन छकिया। देख चलाई तेग वाही दे के अंडट कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्मे सीस दित्ते बंद बंद कटवाए खुपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म निहारिया। सिखी केसा सवासा संघ निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतियामनगा सदगा सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रछिया रियायत। देख तेग फतेह मृत की प्याज। पंथ की जितरी साहेब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन शरान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मादा राखा बकाल पुरख वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब तुर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। एह नमाणिया दे मान ताणिया दे तान न्योटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी ने पार मेरा बख्श कृपा की। आप जी की हजूरी संध्या वेले दे सुंदर दवान साज रहे हैं। सच दवानों की रमता विच आप जी पितर बाणी सोधर दे पाठ होए। गुरबाणी पाठ करते हुए अनेक प्रकार दी गलतियां भुला दी माफी बख्शोगा वास्ते सुस्पष्ट बाणी बन दी दात बख्श ने गुरबाणी का भाव आइया संगत के हिरदया वसा के करतार्थ करना संगत की हाजरी तिल फुल भेटा की दरगर विखे की सेवावां दर प्रवान करनिया परिवार सुख शांति चढ़ी गल दाता बख्शनिया। प्यारे खालसा पंथ की चढ़ती कला करनी जेलां जवान कौम के जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा भाई अमृतपाल सिंह ते होर प्यारे सिख चढ़ती कला लई संगत वलों अरदास बेनती। आप जी के बख्शिया खजाने विचों कड़ा प्रसाद एक सच के हाजिर है। दर परवान है प्रसाद संघ च वरताउण दी आग्या बख्शो। सुमेंदियां गुरमत सार प्रवान करदे बख्शो लाई श्री मुखवाक।

आस हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव ना जाने मेरा अरदास विखयो ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाए वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नव सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जस जिठे सब दुख दाए तेग बहादुर सिमरी है करुणा दयावै धाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह।

तू काट काट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते प्रमाण जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कूट सा पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सा बिनसे जिन मन चेते करा दया, तिनका जन्म सफलो सब किया करते जिन गुर बचनी सच भाखिया, ते तन जन बड़ पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखमतरे, सेवक जन सेवै ते प्रमाण जिन सेव्या गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप जियो तू चलावै प्यारे, हो ते वे चला हमरे आत के सनाए, जा तू मिल है ता हाउ आए मिला, जिनको तू अर मिलो स्वामी सब तिनका लेखा सुड़क गया, तिनकी गण तन करी एको पाई जो गुरु बचनी हर मेल लिया, नानक दयाल तिन उपर जिन गुर का पाणा मन्या पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावै प्यारे, हो ते वे चला तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदी सब करता सृष्ट नाथ, जिन तू ते आया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप एक निमक सब लाथे जिन गुर बचनी अर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे पौ पाया सनात, तू जग जीवन जगदी सब करता सृष्टा, तू जल थल मेल भरपूर सब उपर सतनी, जन जपियार मन चीत हर जप जप मुक्त कणी, जन जपिया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजड़ मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन पहे सुहेले हर राख लिए रखन हार, हर सत संगत संत संगत जन सुनो पाए, गुरमुख हर सेवा सवल बनी, तू जल थल मेहल भरपूर सब उपर सच तनी, तू थान तनंतर हर एक एक रव्या, वन त्रिण तर पवन साव श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या, सब चवे हर हर नाम करते असंख गण तार त्यावे, सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे, सो सफल दर्शन ते करते जिस हर हृदय नाम सद चव्या, तो थान थनंतर हर एक एक रव्या, तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिलै, जिसके मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हार गुण टिकै, हार गुण हृदय टिकै तिसकै, जिस अंतर भाव पावनी होई बिन पैकने न प्रेम पाया, बिन पै पार न उतरिया कोई, पाओ पाओ परीत नानक तिस लागै, जिस तू अपनी कृपा करै तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवै मेरे स्वामी मिल तिस मिलै, तुखारी महला चौथा, नावण पुरब बीच गुर सतगुर दर्स पया, दुरमत मैल हरी अग्ञान देर गया, गुर दर्स पया अग्ञान गवाया, अंतर जोत प्रगासी जन्म मरण दुख खिण मैन विनसी, हर पाया प्रावे अविनासी, हर आप करते पूर्व किया सत गुर कुल खेत नावण गाया, नावण पूर्व बीच गुर सतगुर दर्स पया, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिण खिण निमख विखा, हर हर

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

क्रोध विकराल मिथ्यारथसी असो वस्त्र मिथ्यारंग संग मायापेक्षस्ता मिथ्यात्र होमु अभिमान मिथ्याप सुपर कर्त कुमार अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जब जब जीवा हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्या स्पर्ध को हिरे मिथ्या नेत्र

सुख पावे। साध संग बस अगोचर लह, साधु कै संग आजर सह, साधक संग बसे थान उचाय, साधु कै संग महल पहुचाय, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै गुरबान, साधक संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार।

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

पंडितको सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चावरना में जपे कहो नाम, जो जो जपे तुझकी गत होए, सा संग पावे जन को हे, कर कृपांतर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र।

बाहर न कोई, कबू सा संगते पावे उस स्थान ते बाहर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, बंधन नामृते करंग सदा बसे पार ब्रह्म का संग, ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग।

अभिनाशी राय कृष्ण कांड धारण धार्य ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा बंद सकल संसार द्रेतन मंद प्रभु के सेवक सकल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे में लय कृपाल गुरु का शब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बट पाग नाम जपत पामे विश्राम नानक तिन पुर कऊतम कर मान जो किश करा सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वासो होए करने हार भुषाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तुम माए समाये हुए सुख निदान उन्हों बन आए

चलत करे खन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिदगर बनत मनाई अपनी कीमत आपे पाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जी वह नान घर ढाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत बेद भरा नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के

आनंद मरे शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुगत मोग पाए एक निमक हर के गुण गाए अनगराज भोग बढ़ियाए हर के नाम की कथा मन पाए अभोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो गर्डी सो बात मंथिर दे बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभ देहो निवास।

अष्टपदी। जब आकार घाषणा दृष्टिता पापं तप कहते होता, जब धारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिहन्ना जाप तब तब हर सो कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपन आप आपार ब्रह्म तमो का कि शब्द ब्रह्म आपन के लाभ तीजा नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मुक्त को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जो तर है तब गमन ने डर गमन कत डराए। आपन जलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख यापन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस भूषत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर या गाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे।

पूरा मद पूरी अमृत जागी दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनुभ सबल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रमान अंतर जामी पुरख प्रधान जिसमन वसे सोध निहाल ताके निकट न आपद काल अमर भय अमरावत भाया साह संग नान घर ते आया सुरोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान देर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समेगरी एक सघाट माहे अनुग्रंग नाना दृष्टा हे नाव निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं सगा विश्राम सुन समाद अनत नाद गहना जाइया चार्ज विस्मात इन देख्या से आप दिखाए नानंद जन सोजी पाए सुंदर सो बाहर आनंद घटघट ब्याव रह पगवंद तरण माया गास भया सर्वलोक पूर्ण प्रत बाल वंदन प्रभुत है पार्वन जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पानी मैं संतर माहे चार गुण दे दसे समाहे तसे भिन्न ही को ठाऊ गुर प्रसाद नानक सुख पाऊ वेद ब्राण सिमरत मैं देख शशि हर सूर न खतर मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोलना कबू डोले सर्व कला कर खेलै खेल मोलना पाइय गुणे अमोल सर्व जोत मैं जाकी जोत हार्यो स्वामी ओत बोध गुर प्रसाद ब्रह्म का नाथ नानक मैं विशास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता दिसकिए रहत सद भजन साधु सब कहत जो जो ए सोई सुख माने करण करामन हार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी हो ही नानक दर्शन देख सामोही आप सत किया सब सात इस प्रभु ते सगलुत पात इस भाविता करे विस्तार इस भाविता एक अंकार अन कला लखी न जाए जिस भावित सलाए मिलाए कम निकट कमन कहिए दूरा पे आप भरपूर अंतर्गत साव जनाए नानत जना बुझाए सर्वभूता प्रतारा सर्वनयना पेखण हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना।

सोचाय सोच न हो वै जे सोची लाख वार चुपै चुप न हो वै जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइऐ किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई

आई है। हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझ जाए ता हमें कहे ना कोई।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रन मुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग

और असंख मरकर जाहे जोर असंख गालवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेच मल पाख खाए असंख नंदव से करें पार नानक नीच कहे विचार वार्या ना जावा एक वार

आदेश से आदेश आद अनिल जुदे को वेश ज्ञान दया भंडारण कर कटवा जहनाद आप नाथ नाथ सब जाके रिश दे अवरा स्वाद।

रूप ताकिया गल्ला कथिया न जाए देखो कह पिछय पछुताए चिछ घड़िए सुरत मत मन बुद्ध चिछ घड़िए सुरा सुदा

गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है अजराज हजारे पोत पे कपवान के पोवत गौन गने ने जात बचारे श्री पश्री भगवान पजे मनंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दया।

मानवेंद्र के जिंदर निरातम जो अंतरलो को राज करेंगे कोट स्नान गजाज के दान अनेक स्वयंवर साज बनाएंगे ब्रह्म है सर्वेश्वर सचिव।

दुई कुदरत साजी एक रस डिठ चा दाता करता आप तो तुझ देव कर पसाओ तू जानो सबसे दिल ऐसे जिंद को आओ कर आसन डिठ चा कर आसन डिठ।

अंदर गुरु रामदास साहब महाराज बख्शिश कर देने। महाराज जी कहते हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। आहा, कीर्तन करने वालों नूं तां महाराज जी ने नवाजिया ही है, हुण कथा वालों नूं भी नवाज रहे। कहिंदे वाहिगुरु दीआं कथा कहानियां ओही सुना सकदे ने जिन्हां दा गुरु मित्र बन जावे, जिन्हां नूं गुरु कृपा कर देवे, बख्शिश कर देवे। किड्डी वड्डी गल कही है महाराज जी ने। बलिहारी गुरे अपने गुरु कौ बल दे। महाराज जी कहते मैं अपने गुरु तो बलिहार जाता हाँ, सदा सदा अपना आप अपने गुरु तो वारदा हाँ। क्यों? उन्होंने कृपा दे नाल आए मिल, गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। मैनू ये अरदास करन दी जा चाहिए,

महाराज जी तुम मेरे मालिक हो, मेरे साहेब हो, मेरी पत दे रखवाले हो, मेरे मीर हो, पातशाह हो। तुद पावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। महाराज आप जी गुणा दे खजाने हो, आप जी नू अपनी बंदगी पौंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़ा कोई वाहिगुरु नू याद करदा है वह वाहिगुरु नू चंगा लगता है। कई नास्तिकां ने ते सवाल किते है फिर रब भी भुखा हो गया बड़ियाई दा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मां बाप कदे बच्चियां तो वड्याई ते भुखे होए आ? कदे भी नहीं। किस चीज दे भुखे होंदे? मां नूं इक्को ही भुख हुंदी आ वी पुत प्रेम नाल मां कहे बस। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेबे कहे, बापू कहे, जिहड़े साडे अपने वर्ड आ पंजाबी दे, पुत ऐ प्यार नाल कहे बापू, बस बापू प्रसन्न हो जाता अंदरों। महाराज जी कहंदे असी रब दे बच्चे आ, मैं जदों प्यार नाल उन्हों आवाज मारदे आ बापू, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। कहते जो ए प्यार नाल याद करते हैं ना, वो बंदगी है उदी, वो आवाज उदी बंदगी है, वो आवाज उन्हों चंगी लगती है। मैं जिस दिन वो आवाज साढ़े दिल तो बजनी शुरू हो जाती है, वो दिन दूर नहीं हुंदा जिस दिन दिल के दरवाजे खड़क जाते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

सो धन गुरु साबास है हर दे सनेहा ओ वेख वेख गुरु विगसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी

विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहेब साच नाए भाख्या पाओ अपार आखै मंगै दे दे दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ बड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविय गुणी निधान गाविय सुनिए मन रखिए भाओ दख दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जीती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा कै मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजै जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तरतवल आकाश सुनै दीप लो पताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सलहन मंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का इसनान सुनै पड़ पड़ पावै मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गहा सुनै सेख पीर पात सा सुनै अंधै पावै राहो सुनै हाथ होवै असगाहो नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहै पिछे पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बहै करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवै मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने मोहि चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जी को मन जाने मन कोए मन्ने पाव है मुख द्वार मन्ने परवारे साधार मन्ने तरे तारी गुरसिख मन्ने नानक पवह न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोह दर राजान

अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवन सुबेला वखत कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती माह कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडती जय होवै लेख पुराण, वखत न पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोए, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, किब कर आखा किब सलाही क्यों वरनी किब जाना, नानक आखण सबको आख एक दो एक सियाणा, वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवै, नानक जे को आपो जाने अगे गया न सोहै, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा असलु एक तात, लिखा हुए ता लिखिया लिखे हुए विनाश, नानक वड़ा आखिया आपे जाने आप, सलाही सलाहे ती सुरत न पाइया, नदियां अते वह पवह समुंद न जानिए, समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल न होबनी जे तिस मनु न विसरै, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुनन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे, एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एबड़ ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेबड़ आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता करम लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए, केते मंगहे जोद अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप तुट है बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केत्या दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, हो राख न सकै कोए, जे को खाए काखण पाए, ओ जाने जेतिया मुँह खाए, आपे जाने आपे दे आखे से पे के के, जिसनु बख्से सिफत सलहा, नानक पात साही पात साहो, अमुल गुण अमुल बपार, अमुल बपारिये अमुल पंडार, अमुल आव है अमुल ले जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल तरम अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे ले बलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्यान, आखे बरमे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन सेव, केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे ता आख न सकै केई के, जेबड़ भावै तेबड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार, सोदर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले, वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे, केते राग परिस्यो कहिया न केते गावन हारे, गावै तुहनो पौन पानी बैसंतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंद आसन बैठे देवत्यां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले, गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे,
गावे खंड मंडल प्रभंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चितन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता आपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे बभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बज है नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सद अवरा साध संजोग विजोग दो इकार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिब तिस भावै तिवै चलावै जिब होवै फुरमान ओ वेखै ओ ना नदर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सु एका वार कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख हो है लख होवै लख वीस लख लगेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एतराहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गलां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेस केते ब्रह्म घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहै पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिदां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहया परपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओ मरहे न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे तिथे भगत वसै के लोह करहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल
तिथे खंड मंडल ब्रह्मांड जे को कथै ते अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिव तिव कार वेख बिगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िए शब्द सची

मिलावही। तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई, सरसिहिरी लै भर जा संग लाई पांचो आर जा। सुरमा नंद पास कर आई चंद्र बिंब मंगलन सुहाय, सरस बाण वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा, हिठ पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी।

तो सब जगत पैरी पाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।